तुमरी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सज्जन सुहेले, राखो हो राखन हार दयाला, नानक करके गोले, रख हो रखन हार दयाला, नानक करके गोले, सो कहो टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसियाए गुरु के, जन्म मरण दुख जाए, होवै सिफत खसम दी, नूर अरसों कुरसों चटिया, तुद डिठे सचे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिया, सजन सच्चा पातशाह, सिर साहांद साहो, जिस पास बैठिया सोही है,

चित आवै, चित आवन का सदका सर्ब सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रच्छिया रियायत। देख तेग फतेह बिरद की पैज, पंथ की जीत, श्री साहिब जी सहायत।

जैसे सर सरिता सकल में समुंदर बड़ो, मेर में सुमेर बड़ो, जगत बखान है। बिरखन बिखे जैसे चंदन बिरख बड़ो, तातन में कंचन अत उत्तम कैमान है। पंछियन में हंस मृग, राजन में सारदूल, रागन में श्री राग पारस पखान है। ज्ञानन में ज्ञान अर ध्यानन में ध्यान गुर, सकल धर्म में है गृहस्थ प्रधान है। जैसे जल में कमल निरालम,

निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंब ताका मूल उचारत भेदा जाको भेव न पावत बेदा ताकौ कर पाहन अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत नह पिव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तो हितेती तुमरा लखा न जाए पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एकै रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कही भूपा अंडज जेरज सेतज कीनी उत्पुज खान बहुर रच दीनी कहूँ फूल राजा हव बैठा कहूँ सिमट भयो शंकर इकैठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव आद जुगाद स्वरूप स्वयं पव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रणकाता जे अस्तु हिता।

कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता, किलबिख सगल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को शय करता। श्री अस्तु जप भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बंशत फल पावे सोई, दुख न तिसै व्यापत कोई। अड़िल सुनै गुंग यो याहि, सुरसना पावई, सुनै मूढ़ चितला।

सुखहु दिन राति प्रणवत नानक हुकम पछाणे सुख होवे दिन राति सज्जन सच्चा पातशाह सिरसा हांदै साहो जिस पास बैठियां सोहिए

सिपारी उपकारी प्रभु कौ सिमरै है तिन सद बलिहारी सिमरै है से मुख सुहा।

0: परम सत्कार योग गुरु प्यारे खालसा जी, जितने भी गुरमुख प्यारे माई भाई सतसंगी गुरु साहब जी दे दर्शन दीदार करन वास्ते आए हो, मैं बेनती करांगा कि गुरु दे चरणों में जुड़ के बैठियां मेरिया सत्कार योग सारिया भैणां ते सारे वीर, गुरु का खालसा गुरु सवारी सात संगत, सारे गुरमुख प्यारे बड़े ही अदब सत्कार सहित एक बार कहते अपनी अपनी रसना नूं पवित्र करते हुए गज वज के कहो जी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। अज सतगुरु सच्चे पातशाह जी के चरण कमलों में शुक्रवार संध्या के सुंदर दीवान सजे ने, गुरु घर के हैड ग्रंथी भाई रविंदर पाल सिंह जी हुणा ने रहराज साहब जी बाणी का जाप अते सिख कौम के महान कीर्तनीए भाई जसविंदर सिंह दे जथे ने रस भिन्ना कीर्तन किया है। इस दे नाल नाल अज गुरु की कृपा प्राप्त करदे आ जग्गी परिवार का बेटा शान जग्गी, उस नौजवान बच्चे का 21वां जन्म दिहाड़ा है। इस दिन नूं रख के जग्गी परिवार ने बाबा जी की बाणी का ओट आसा लिया, अज शाम दे लंगरां दी सेवा कीर्तना दी सेवा उन्होंने प्राप्त की है। गुरु महाराज कृपा करे उन्हां दे बच्चे नूं परमात्मा चढ़दी कला का बल बख्शे। जेड़े माता पिता गुरु साहब दे चरण कमलों में आके अरदास करवाते हैं ना, वाहिगुरु उन्हां दे बच्चियां दा बड़ा भला करता है। चढ़दी कला दा बल ते पवित्र उन्हां दी आत्मा हुंदी है ते बुद्धि तीखण हुंदी है, जिन्हां दे माता पिता जन्मदिन वाले दिन गुरु दे चरणां विच आके अरदास करदे ने। हुण जमाना नवां चल पिया है, लोक घरां विच बच्ची दा पुत्र दा ते भावें पोते दा जन्मदिन होवे घरे केक कट के तालियां बजा लैंदे है, पर महाराज कहिंदे इह कोई गुरमत नहीं। गुरमत तां इह है कि गुरसिख गुरु दे चरणां विच आए। हे सतगुरु, अज तो 4 साल पहला तुसी साडे घरे एक बेटी भेजी सी, पुत्र भेजिया सी, उसका जन्मदिन है। महाराज बच्चे नूं तंदुरुस्ती लंबी आरजा गुरसिखी जीवन बहुती बहुती एजुकेशन की दात झोली विच पाउणी। जदों अरदास करांगे फिर महाराज कहिंदे ने बिरथी कदे ना होवई जन की अरदास। जिहड़े शरदा भावना नाल अरदास करदे ने भराओ मेरी ओ भैणों, उन्हां दी कीती होई अरदास कदे जाया नहीं जांदी। विद्वान कहिंदे ने खुदा मंजूर करता है दुआ जब दिल से होती है, मुश्किल तो यही है कि बड़ी मुश्किल से होती है। कोई व्यक्ति अंतरात्मे चो अरदास करे मालक उन्हां दी हाजरी बहुत जल्दी प्रवान करदे है। तो मैं बेनती करदा हाँ तुसी हुम हमा के आए हो जग्गी परिवार नूं, जिन्हां जग्गी परिवार वालों जिन्हां जिन्हां गुरमुखां नूं सद्दा पत्र दे के बुलाया गया उन्हां नूं हार्दिक तौर पर जीओ आया। बाकी गुरु की संगत नूं गुरु घर के समुचे प्रबंध वालों सारे सेवादारां वालों जीओ आया, तुहाडा सब का बहुत बहुत धन्यवाद है। गुरु के लंगर विच जिहड़े वीर ते मेरियां भैणां सेवक मानदे ने, चाहे जूठे बर्तन मांजन की सेवा है ते चाहे प्रशादे पकाउण दी, चाहे दाल सब्जी तैयार करन दी ते चाहे कोई होर, वाहिगुरु सब नू नामदान बख्शे, सब नू चढ़दी कला दा बल। ते गुरु महाराज जिथे गुरु घर विच आ के प्रशादियां दा लंगर छकना है ना, उहदे नाल नाल महाराज कहिंदे लंगर चलै गुर शब्द हर तोट न आवी खटिए। मैं देखिया है अमेरिका कनेडा इंग्लैंड जर्मन जापान विच जाके बहुते बच्चे आउंदे आ, बहुते वीर भी इदां दे आउंदे, फटाफट पहलो प्रशादा छको, चलो हुण छेती छेती चलीए घरे, टाइम लेट हो जाएगा, सवेरे फिर काम ते जाना है। वह प्रशादियां दा लंगर तां छक जांदे पर गुरु दे शब्दां दे लंगर दा किसे नूं पता ही नहीं। महाराज कहिंदे दुनिया वालिओ बाबे नानक दा जिहड़ा घर है ना, इह केवल रोटी खाण वाला ढाबा नहीं, ये तो आत्मा नूं पवित्र करन वाला एक महान मुजस्मा है। जिहड़ियां रूहां इत्थे बैठदियां ने अरदासां करदियां ने संगत दे सतगुरु दे दर्शन करदियां ने, उन्हां दी आत्मा पवित्र हुंदी है, उन्हां नूं शरीरक तौर पर बल प्राप्त हुंदा है, उन्हां दे परिवार विच वाहिगुरु सुख शांति वरतौंदा है। ते जे आदमी गुरु महाराज दे चरणां विच केवल लंगर छक के तुर जाए, गुरु दे शब्दां दी परवाह ना करे, समझो आ के गुरु घरों भी सखना तुर जांदा है।
1: पैज रखदा सदा प्यारियां

फिरत प्रभ आया, परिया तो शरणाए, नानक की प्रभ बेनती, अपनी भगती लाए। हम आया दूर हों चल कै, मैं तकी तो शरणाए जियो, मैं आसा रखी चित मैं, मेरा सबो दुख गवाए जियो। सो कहो टल गुर सेवी है, अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसियाए गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए, होवै सिफत खसम दी, नूर अरसाहों कुरसाहों जटियै, तुद डिठे सच्चे पातशाहो, मल जन्म जन्म दी कटियै, सज्जन सच्चा पातशाहो, सिर साहां दै साहो, जिस पास बैठिया सोहीऐ, सबना दा विसाहो, सतनाम

अविनाशी जीअन को दाता, सिमरत सब मल खोई, गुण निदान भगतन कौ बरतन, बिरला पावै कोई।

0: जन करत नहीं तरे।
1: हर को नाम कूट पा पर हरे,
0: मग नाम जप मन मेरे,
1: नानक पाओ सुख नेरे,
0: सिसको राजा दुखिया,
1: हर का नाम जपत हो सुखिया,
0: बंधन पर
1: हर का नाम जपत ने सर है,
0: माया रंग तिख न बुझावे,
1: हर का नाम जपत अगावे,
0: मार के जात केला,
1: हर नाम संग हो सुला,
0: सार नाम मन सदा त्याई है,
1: नानक गुरमुख परम गत पाई है,
0: सूरत नहीं कोट लख बाई,
1: नाम जपत पार पराई,
0: एक बिगन जे आए सिंगार
1: है, हर का नाम तत्काल उदार है,
0: अनेक जोन जन्म में मर जा,
1: नाम जपत पार विश्राम,
0: मैला मल कबू न तो,
1: हर का नाम कोट पाप खोवे,
0: ऐसा नाम जपो मन राम।

0: हर का नाम जन को मुक्त जोगत,
1: हर का नाम जन को त्रिवत भूत,
0: हर का नाम जन का रूप रंग,
1: हर का नाम हर नाम जपत को प्रण अपंग,
0: हर नाम जन की वड्याई,
1: हर के नाम जन सो
0: विपाई, हर का नाम जन को भोग जो,
1: हर नाम जपत।

ज्ञान मार्ग संयम साधन तो में वेल न जावे, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाए, गर्व गुमान दे मन ते छुटे, मन की मैल न तन ते जात, मन ते कबू न बिख्या टर, सुध का एकाची पीत, नानक नाम उदरे पतित भव मूच, अनेक जतन कर तृष्णा त्रापे, कोट बाद

आपन संगा प्रवराते नानक और न जान सकोए हर को नाम जप निर्मल करम सासंग दुर्मत मले रहा हर का नाम जपो जी सदा हर को जसन रसन बखानी।

अंत केल माया रंग सह काल नावे मुड़े चीत चूड़ विकार मालो त्रो नानक राख लो।

राष्ट्रपति एक बस कान विकोट गुआवे तो मुड़ा को का करे ताको की जसद नमस्कारा सब सुखताऊ मन उठा सर्वतोक नानक तिन पाया खाद बीत बरता न दुलास अज्ञानी मन रोज करे भरोस का विश्वास न हो।

ममता माया मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रंग संग माया बेखस्ता मिथ्या पशु प्रकृत कुमान नानक जप जप जी हर के चरण मिथ्या स्पर्द्रय मिथ्या रसना पूजन स्वाद मिथ्या मंत्र पर लोभ लुभावे मिथ्या वास लेत विकारा सबल दे नान करार नाम ले साज बिना कहो सूचा मुखाता कह दुर्गंध मे बिना जो खेती जाए जो कृपन के नार्थ दाम तन

जैसे जल में कमल लेप, जैसे सुसरभ को सोक, जैसे राम को लागत उल्पवान, जो वस्ता को

ब्रह्म ज्ञानी देखज बुरा न पया, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि मत बसी, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जूता, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार मा, ब्रह्म ज्ञानी ने तावत बंदा, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार, ब्रह्म ज्ञानी का बसा प्रभ संग, ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार, ब्रह्म ज्ञानी अभूत अगत, ब्रह्म

ब्रह्मज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्मज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्मज्ञानी को बल बल जाइए। नानक ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्मज्ञानी का सगल मन माए, ब्रह्मज्ञानी को सदा देशो, ब्रह्मज्ञानी सर्व का ठाकर, ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने, नानक ब्रह्मज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्मज्ञानी सजीव नहीं मरता, ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विदाता, ब्रह्मज्ञानी का सब प्रहात।

मनम प्रीत निरंजन दर्श साध की टाल संग संगेत सबते जाने आपस को मंदा मन की बास न मन ते डराय नानक कोट मदे कुआ सा परस बिसन की माया तो पिन इस वैष्णव का निर्मल धर्म केवल भक्त कीर्तन संग्राचय सब पर होत कृपाल नानक वैष्णव परम गत पावे सल त्याग कह दुष्ट का संग कर बुझे सकल पार ब्रह्म तिस भगवती की मत उत्तम होवे मंतनर पैसन प्रीत नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे राम नाम अतम में सोता है उस पंडित के उपदेश जग जीव है सो पंडित पर जो नावे सुखम में जाने स्थूल नानक उस पंडित को सदा आदेश चौर न मैं जपे कहु नाम सा संग पावे जन कोए असुरेत मुग्ध बात को तारा कल्याण रूप मंगल गुण काम नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर करम तिसका नाम सतराम दास दास संतन पाए दिन पाया सो सुता दस कर प्रमाण तिस दास को सब सो जी पराय ऐसी जोत नानक राम दास जीवन मुख सु सदानंद नहीं वियोग तैसा मत तैसी भी कुटी तैसा रंग तैसा राजान नानक पुरु कही जीवन मुक्त जित जित कारा

कईकोटाचार विहारी कईकोट वन प्रमादासी कईकोट दुपी सरोते कईकोट कब का विचार है नानक करते कांत ना पावे कई कोट अंध ज्ञानी कई कोट अपिक आत्म निर्को कई कोट पर दुख न करे कई कोट परदेश परमाए नानक करते की जाना करता कई कोट राजस भोगी कई कोट पात्र वृक्ष निप जाए कई

जिसके अंतर विराजमान जो जाने मैं जो गुणवंत आपस को करवंत कावे तन भूमिका जो करे गुमान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे धनवंत होए कर गरबावे बोलस करन मानक ऊपर करे आस सब ते आप जाने बलवंत किसने बदे आप बंकारी गुरपुर साथ जाका मिटे अपमान गुड़ कर्म करे उतारे अनेक तपस्या करे अहंकार अनेक जतन कर आत्म नहीं द्रवे आपस को जो पुला कावे सबकी रेंज जाका मन होए जब लग जाने मुझते कुछ होए जब वे जाने मैं कुछ करता जब तारे को बरी मीत जब लग मो मगन संगमाए प्रभु कृपा ते बंधन टूटे सहस कटे लक उड़तावे अनेक भोग भिख्या के करे बिना संतोख नहीं कौ राजै नाम रंग सर्व सुख होए करण करावन आपे आप करण करावन करने हार जैसी दिष्ट करे तैसा होए जो किश कना सपने रंग पूजे।

अपने चलत आप करण हार मन में आप मन अपने माए सत सत सत प्रभु स्वामी सच सच सच सबगीना भला भला भला तेरा रूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी पवित्र पवित्र।

0: राष्ट्रपति
1: संत के
0: दुखन जम ते नहीं छुटे
1: संत
0: के दुखन नरक में पाए
1: संत
0: के दुखन सुबते न संत के दुखन तान पष्ट हुए नानक संत संग निंदक पीतर है
1: संत के
0: दुखन
1: ते मुख पवे
0: संत के
1: दुखन
0: काग जुलवे संतन
1: के दुखन
0: सर्प जोन किरमाए
1: संतन
0: के दुखन सब कुछ चले
1: संत के दुखन ते सब जाए
0: संत के दुखन नीच नीच आए
1: दुखी का था वो ना
0: नानक संत पाए ताए बिगत पाए
1: संत का निंदक मात ताए
0: संत का निंगत निंदक टिंगन न पाई
1: संत
0: का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक दुखी यार दीन संत के निंदक को सदा बिजोग संत नानक संत पाता उसका पियो मोक संत का दुखी किस का नहीं मित
1: संत के दुखी को डान लागे
0: संत के दुखी को सब त्याग संत का दुखी सदा भिखारी
1: संत
0: की दुख ना सुख दे टरे नानक
1: संत
0: पाए तलय मिलाए
1: संत
0: का दुखी कित का ना पूछे संत का दुखी उजड़ पाई है जो सास बिना मृत की लोता अपन बीज आप पे ही खाए नानक संत पाए तलय बार
1: जो
0: जल भी उन

गुरु प्रसाद तब सब पूजिया नानक सो सुखम सोई स्थूल अपन चलता भी कर आज्ञाकारी तारी सब सिष्ट अनेक ज्योत जुगत रचता प्रताप तारण तार यो ब्रह्मंड आज पता नानक जाप सौल संसार द्रय तन मंत प्रभु के सेव दुख विसारण गुका सब जपय निहाल जिसनो कृपा।

रब की जो सगल कर सो है जा सब कुछ इसका दिया दर्प है रब की कला बिना कहता वै किस दिन आर जाने का वार नानक सो जन सदा रोग तो गुर का शब्द मुने स्तमन प्राणी गुर चरण लगत निस्तर गुरदर्शन देख मन होए विकास जो साधु संग मिल जो प्रगटावे नानक की हर लोचा पूर गुरु लिखे काल किया पाइय अवर त्याग तू दिसै चितार भुला गाए बिरह जान लपट रहे उतरस लोभी पतंग नानक पर सेती कर जाए राम नाम संतन गज पर पकाए राम नाम हृदय में तोल अवर त्याग विक्षा जंजाल मुकू जुल हर दर गए सोए नानक ताक सद बुलिहार है रब साध को अपना जियो साधु पर जाइए कुर्बान सा संग हर कीर्तन गाइए हर गुण गाय अमृत शाख है सर्व सुख नानक ते पाया रुके को देवता दार गुरु लिखे कल्याण पाए इस बिंदु सरोवा ना होग सकते उच्च निर्मल करनी नानक सो जन निर्मल तिया इस जन आवे हर प्रवचित जा कर दय कोए सच हृदय सतमु कहत सच वरता साचा पासार क्रम जिन सच कर जाता नानक सो जन

पूजा सा ससे उतार नाम सा सत्यनार आपे गुण आपे गुणकारी सुरत सत सच जसंता नानक सत सत प्रसोए कनक राम तिन मूल पहचानिया तत ज्ञान ते सुमन प्रगटाया जिस देव जय ते समाए समाना ताको बिना कह न जाई नारायण मिले तान केक ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत ठाकुर सेवक नाम कह रंग सेवक की राख है निरंकार नानक सो सेवक सास्ता समार अपने सेवक की सर पर राख है अपने सेवक को नाम जपाई ताकि गत में कोई न लाख है रवके सेवक उच दे उचे नानक सो सेवक दैदेश भगटाया असंग्रह लसकोर कोर लाख है ताको राखते करात इसके इसके कर्तव्य तय जात सब जी आकारा का सोए जप नानक प्रबलक विडाणी पी अमृते मन तंत्र पिय नानक नमो सुकर नाम का संग मंथन नाम मैं नाम सुमाने कौ नानक जन का सदकाम रूपने जन की नी जात प्रभुपने सुरय समाये प्रभुपने का हुकुम पहचानै तिसका गुण का एक न जानू कौ नानक से जन पूरे मंथन अपना तिन दिन दे सोजन सर्व दुख का दाता तिसके दर सब पाप मिटावै तिस जन की तू सेवा लाग जाना होवी तेरा नानक तिस जन के पूजो सद पैरा सलो सतगुरु।

सेवक परमेश्वर की का जाना है। अनेक बार गुर को बल जाओ, आड़ पैर पा ब्रह्म रंग राता, एक है आप नहीं किस परम, नानक ऐसा गुर बुढ़पा की पाई है, पर सचन करने मलित पाप रंग की तरक गवै, मन संतो गातम पतियाने मध्य हुए संत, नानक जिस भाव है तिस लाए मिलाए, सतपुरख पूर्ण विवेक अगम गोचर प्रभ निर्वाणी, ताकि कीमत के न ना पाई, चरण कमल हृदय समर है, नानक जिस प्रसाद है सब प्रभ जपने, अमृत पिए अमृत सोए, जाके मन पगड़े गुंतास, सच उपदेश सेवक को दे, मन में राखे हर हरेक, नानक परमो दुख ते नासे, अनंत पै दुख ना टे पाई, साधु के गुरु न उपदेशे, सगल ब्याज मन ते कह नसै, सा संग जप नहीं अपना मुरारी, सुना नु खर अर्ज सुन, कलाता जिन सकते मोई, अपनी कीमत आपे पाए, सर्व निरंतर को सोए, भय प्रगा साध कै संग।

राष्ट्रपति एक समृद्धा महाधार चरण कमृत में उतारो दृढ़कर गौ नाम अरवथ संत जना का निर्मल मंत्र सर्व रोग नानक मर जाए सूतन हर सेवा ते पावे सुसुख साधु संग प्रीत सासु बचार की सनी रोग मिटा राव पतलाए जप नानक दरगह परवान दैदे साव ताव ठाए जाकर दब सहर सोए सिमर सिमर सदा सुपाओ भगत पाया तम प्रकाश कौ नानक काटी जम्पासी जन्म मरै सो काचू काचा आप दयाग सन गुरुदेव हर हर सिमर प्राण आधार सिमर सास वेद विचार मन वंचित नानक भुल पाए तुम क्या लपटा है मूर्ख मना इनते कहो तुम कौन सुनाता इनते कहो कौन छुटकार झूठा डांग टूट पा सारी नाम विसार नानक पछताना भगत बना बोटो बेचाने निर्मल होए तुम्हार उचित जन्म जन्म के किल बिक जाए सुनत कहत रात कर पावो सहस भाय नानक गुण गाओ बिस जायो मैं बिखैल सास ग्रह सर नाम समाल सासंग पावे सचना यहाँ सुख जयकार कौ नानक जाके मस्तक लेख एक सिमर एको मनाए मंथन जा बेको।

चाचक जन जाचा प्रवधान पूर्व सास प्रवत में त्याओ बोध करो प्रकृति नित नित नानक मांग नाम प्रसार हरस बाला कोई पूरन परख नहीं डोलाने उजय चाओ साध कह संग अंतर प्रका संदिन लिबलाक नानक नाम रते सुखोए सतगुर ते निर्मल मत लई सेवकी न सदा निहाल जन्म अंडू प्रम गया रव रया सत्संग जूरी नानक भक्ति नाम समाए सुख सहज किया जाना है सुख सहज जीवन जिया गुरु प्रसाद को बिरला लाख है जन्म जन्म का टूटा घाटा है प्रभु नानक जन त्याया आन त्याग जपो हर नाम आ जपो औरा नाम जपाओ बिन भक्ति तनो सिचार बूढ़ जात पाए विश्राम नानक नाम जपो गुणतास मंतन अंतरे सुहाओ मन विषय सा चंतुए बिरला को पावे संग गुरु प्रसाद नाम जप लया नानक रया सब समाए उद्वसल सदा कृपाल सर्वकड़ा कर्त विद्वाल वजना के प्राण आधार भगवाय लाय मनहित नानक तुम रिशन पुर भगवान एक नम करके गुंगाए हर के नाम की कथा मन पाई रसना जब तीहरा नीत हृदय से पूर्ण गुरु।

अपन तब कहते होता तब भैरव की संग मात तब हर शोक किस व्यापत तमो का किस परम नानक करने हार न दूजा तब बंद मुक्त को किस को गनी तब नरक स्वर को कौन अवतार तिसो सिख को किथाए तब कौन न डर कौन कटर है नानक था कर गम अपार तब जनमन को का विनाशन तब जमकी त्रास को किसोए तब चित्रगुप्त किस चीज की पूछत लेखा तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे नानक अपन रूपा पी पर जा तेबिन मेल कहो क्या तोता ते कौन को मान कौन अपमान की ते किसे भू कौन तृप्ता वै नानक करते कनाय सुमार तब काम मां बाप मित्र सुत पाई ते वेद देव का कोचिन तो सगुण सबन का विचार है नानक अपने का जानो आप वह किसे व्यापत माया त्रिगुण का गनाई प्रवेश ते कौन चिंत किस लागे चिंता तो सगन कौन कहन नानक पसुआचा ते गुण में कि न विस्तार को नर को सुर कुंठाल मोह परम पैपार अनेक प्रकार की उपख्यान संकोच नानक एक जय बुसरा पाशा संत प्रताप उनकी शोभानु बनी आपे रस भोजन निर्योग तिस पावे तिल के लावे।

जाके मन लगर रंग सुन सुन नंद करे प्रभु का जय नानक उदरे तिनके साथे।

सावधानिकाकञ्चित् युष्मन्वशोतनिदान प्रधानप्रकटसुलोये वर्णावयावञ्जान नानुसप्राप्तोये बुद्धज्ञानसर्वतसिद्ध ज्ञानसेतुतुमिस्नान सौख्यम्।

0: दस देवे मत कड़ी मस कले जंगाली बलवान की भी नेक जन जिस बहुती चौ पत्राली गुरु सिखा के मैं कुछ ले मनुख दिए पराली माता की सोए सोए जो कुछ को उठाली सो सोए जिनको उठाली ओरियो गंग बहाई है दुनियाईया के क्यों
1: नानक की सर जगन्नाथ जदी बहन बिर क्यों
0: राणा पर्वत कर नेत्र बासक सिर रड क्यों
1: 14 रतन निकाल अनकार आवा गुण चिल क्यों
0: हृदय वे खालिन जिने अड़ पिंटन क्यों
1: तेरे तरे अनु सतर सिर समान क्याड़ा शक्यों।

तय निर्मयो सब संगत कुल उदरण पुर अमरदास कीरत कहे त्राय त्राय तौ पासरण भूतो विदाता निर्मयो सब संगत कुल उदरण गुर अमरदास कीरत कहे त्राय त्राय तौ पासरण।

0: गुर अमरदास तारण तरण जन्म जन्म पासरंतो।
1: जप तप सत संतोख पिक दर्शन गुर सिख है शरण पर है ते उबर है छोड़ जमपुर की लिख है भगत पाए पर पूर हृदय उचरै करता रे गुर गहर दरियाओ पलक डुमत तहता रे नानक कुल निमल अवतरयो गुण करता रे उच्चरे गुर अमरदास जिन सेवयो तिन दुख दरिद्र पर हर पर गुर अमरदास जिन सेवयो तिन दुख दरिद्र पर हर पर
2: चित चित

0: अनाथ है, अजय है, अजाद है,
1: अजन्म है, अवर्ण है, अपूत है, अपर्ण है,
0: अगंज है, अपंज है, अचूज है, अचंज है,
1: अमीक है, रफीक है, अंध है, अबंध है,
0: निर्बुज है, असूज है, अकाल है।

रूपे दरबरगंग दरबादे गंजे गादे भुक्त स्वरूपे चिजे है अचूत है निरुक्त प्रभा है सदैव सदा है निरुक्त सदा

समस्तुल निवास है, समस्तुल जुबा है के साहिब के राह है, केसर गुल गवन है हमें सुलरवन है, परंपर अमीस है समस्तुल अधीस है, जमीनुल जमा है अमीकुली माँ है, प्रकाश है के अमितो सुभाष है।

0: सलाम
1: हर हर अखंड मन नर अमन
0: पवन आसमान मन प्रकाश
1: धन प्रणाम जल थल मुदाम
0: अंश जि अंग आसन अपंग
1: अपार गत मित उदार
0: जल थल अमंड दिसवे से पंड
1: जल थल मात दिसवे स्पे अंत
0: धन पवन अस्त्र तर तुरास
1: अजान बाहु एके सदा
0: ओंकार आदि कथनी अनाद
1: अखंड ख्याल गुरु

करमत टीठ करम हर बोल मना चंत प्रसाद करुणालय है हर काल है जगतेश्वर है परमेश्वर है।

0: दीन बंधु सन के हंता तुम हो पुरी चतर दस कंता
1: काल पाए
0: गर्भ सन प्रकाशा सकल काल का किया तमसा जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा
1: काल सब जग

0: सतगुरु प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु में पाया
1: सतगुरुता पाया सहज सेती मन बजियां वधाइयां
0: राग रतन परवार परियां शब्द गावा।

0: पावे।
1: सदा सिर सलाह तेरी नाम मन वसावे।
2: नाम जिनके मन वस्या वाजे शब्द कनेरे।
1: कहे नानक सच्चे साहेब क्या नहीं करते रे।
2: साचा नाम मेरा आधारो।
1: साच नाम आधार मेरा जिन पुखा सब गवाइया।
2: सास सुख मनाए वस्या जिन इच्छा सब पुजाइया।
1: सदा कुर्बान किता गुरु बिठो जिस दिया ए वड़ियाया।
2: कहे नानक सुनो संतो शब्द करो प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो।
1: वाजे पंच शब्द तित कार सभागे सबद वाजे कल्ला जित करतारिया।

0: प्रसाद पाशाही दसवीं त्वे प्रसाद सोइए दीनन की पत पाल करी नित संत उबार कनी मन गारे
1: पाच मधु नग नाग निरंतर समय सब को पित पारे
0: है जल में थल में पल में कल के नहीं कर्म विचारे
1: नील दयाल दया नील दुखन देख लाभ देख नहारे
0: खन को दल दुचन के पल में दल
1: डाल पूर्ण प्रेम की प्रीत
0: पाए सके पद्मापद वेद कते पेद उचार
1: रंग
0: पुजंगम भूत पविक भवान बनाए
1: देव एक
0: पुराण कते पुराण हसीब थके कर हाथ ना
1: पूर्ण प्रेम श्री पद्माप पाए
0: आदनंत अगाध द्वैक सुपूत पविक पवान अभय है
2: आनवीन नाथ मा पदार

0: भेद बतावे चतुरानंद से रूम नारिक से सब हूँ मिल गायो सिद्ध सनातन
1: कुरान
0: कते कुरान अपेद निपान सबे पचहारे
1: राग
0: न रूप न रेख न रंग न साख न सोग न संग तिहारे
1: नहीं गोलता

संत की बार महल पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर का नाम त्याय कै हो हरिया पाई मान त्रिण त्रिपवन मौलिया अमृत फल पाई नानक सिमर एक नाम फिर बोनताई अपने चरण पायन बच देव खुड़वा।

0: मरो तो साच भतीजै।
1: संत सहाय सदा जग माए, कृपा कर श्याम है वर बीजै।
0: सवैया दे शिवा वर मोहे है, शुभ कर्म ते कबू ना डरो।
1: सो जब जाए लड़ो निश्चय करे अपनी जीत करो।
0: हर सिखो अपने ही मन को हे लाल चौगुण तो उचरो।
1: जवाब की औद निदान बने अत हीरन में तब जूझ मरो।
0: धन जियो तह को जग में मुक्ते हर चित में जुद विचार है।
1: नित ना नित रहे
0: तीरथ बनाए तन बुद्ध ज्यों दीपक ज्यों जारे।

0: व्यापत पूरन तनी जाकी शोभा कट कट बनी।
1: जे सिमरत दुखे राड है, जे सिमरत जम के चनाक है।
0: जे सिमरत होत सूखे हरे, जे सिमरत डूपत पाहन तरे।
1: संत सभा को सदा जयकार, हर हर नाम जन प्राण धार।
0: कौन नानक मेरी सुनी अरदास।

0: श्री अरदास संत प्रसाद मोको नाम निवास
1: श्लोक गुरुदेव माता गुरुदेव पिता गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा
0: गुरुदेव सखा ज्ञान भंजन गुरुदेव बंदित सोदरा
1: गुरुदेव दाता हर नाम उपदेशे गुरुदेव मन निरोधरा
0: गुरुदेव सां साध बोध मूरत गुरुदेव पारस परस्परा
1: गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर गुरु ज्ञान मांजन अपरंपरा
0: गुरुदेव कर्ता
1: गुरुदेव आज जुगा जुग जुग गुरुदेव मंत है जप उदरा गुरुदेव संगत प्रभु मेल कर कृपा
0: हम मूड पापी जित लग तारा गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्कार गुरुदेव संगत प्रभु मेल कर कृपा हम मूड पापी जित लग तारा गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर।

0: हर ब्रह्म सरनाई,
1: विद हमारे राम का लुख लगे न पाई,
0: सतगुर पूरा पेटे आजन बणत बनाई,
1: राम नाम ओखर दिया एका लिव लाई राओ,
0: राख लिए तिन रखन हार सब व्याद मिटाई।

0: चिंता लाए हमारी राव।
1: अवर न सूझे दूजी ठहर हार परयो तो द्वारी,
0: लेखा छोड़ लेखे छूटे हम निर्गुण लेओ उबारी।
1: सद बक सिंह

0: भक्त सिंध सदा मेहरबाना, सबना दे अदारी, नानक दास संत पाछे परयो राख लियो ए बारी।
1: बसंत महला पंजवा घर दूजा हिंडोल एक ओंकार सतगुर प्रसाद, ओए कतर मिलो मेरे भाई दुबदा दूर करो ले बुलाए।
0: है नामे के हो जोड़ी गुरमुख बैसो सफा बिछाए,
1: इन विद पासा टालो वीर
0: गुरमुख नाम जपो दिन राती अंत काल ने लागे पी रहाओ।
1: कर्म धर्म तुम चौपड़ साजो सत करो तुम सारी,
0: काम करो

बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास। रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरे आए घर नौने दयावै ताए। सब थाई होए सहाय। दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ। दीदार दा ध्यान तरके बोलो जी। पंजा प्यारियां चौह साहबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां। जिन्हां नाम जपिया वन छकिया देख चलाई। तेग वाही दे केंडिठ कीता तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यांतर के खालसा जी बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दित्ते बन बन कटाए। खोपरियां लुहाइयां चरखियां ते चढ़े ਹਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੀ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੈ ਚਿਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ

चक्र चिह्न अर वर्ण जात अर पात नहन जेहे रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत के हे अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कह जय कोट इंद्र इंद्राण साहे साहान गणिज त्रिपवन महीप सुर नर असुर

जग और न जाहि महान तम में अवतार उजागर आन किया तिनके दुख कोटिक दूर गए मथुरा जिन अमृत नाम पिया एह पदत ते मत चूकै हरि मन भेद विभेद न आन बियो प्रताच हृदय गुर अर्जुन कै